ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गति सत्तमः सुधन्वा खण्ड परशुद्धारुणो द्रविण प्रदः दिवस्पृक् सर्वदृक्प्यासो वाचस्पतिरयोनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं विशक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो